कोई लिख रहे हो ना, यूं मेहरबा प्यार का आसमा, कौन है वो यहाँ बता दे कोई, तुम भी गाओ।

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: भाऊ, हम तो आपको बहुत पहले बताना चाहते थे, ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है।
1: चोली के पीछे तेरी दादी माँ।

0: पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान बढ़ेगा महंगा।
1: तेरा घर इसमें चले जाएंगा पूरा।